0: अलावा उदय नवे आई हत लिहाई
1: लाइव एफएम।
2: श्रीलंकीय रिदमय विश्व सिसारा लाइव एफएम।